मीडियम बीप 204.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई सन 2026।

यह आकाशवाणी रीवा है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिली करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस भजन के साथ ही सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का युवा केंद्र है। किसान भाई सुने कृषि संकेत। आज का विषय है पशुपालन में खनिज मिश्रण की उपयोगिता।

किसान भाइलो, एमा कोनो संदेह नहीं है कि अपने देश में कई वर्षों से डेयरी व्यवसाय आकि दूध उत्पाद आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाइस। किसान भाइलो, व्यवसाय में लाभ मुख्यतः तीन कारक जैसे पशु के नस्ल, पशु प्रबंधन और पशु पोषक पर निर्भर करत है। दुधारू पशुअन के विकास दर एवं उत्पादकता वृद्धि में पशु पोषक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। किसान भाइलो, उपयुक्त आहार यह सुनिश्चित करता है कि पशु के शारीरिक बचपन निकाह हो, जिससे अधिक दूध उत्पादन करे और शरीर स्वस्थ रहे। दुधारू पशुअन में हो वाला कुल खर्च में से 70% भाग अकेले के आहार में होते है, इसे ओखर महत्व और बढ़ जाता है। किसान भाइयों, चारा और आहार में खनिज के स्तर क्षेत्र के अनुसार बदलत रहा है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के खातिर खनिज मानचित्रण कार्यक्रम पर आधारित क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण तैयार करब जरूरी होता है। यह स्थिति का ध्यान में रखत दुग्ध उत्पादन के खातिर कई उत्पाद संपूरक इत्यादि विकसित केंगे, जही स्थानीय चारा संसाधन के साथ मिला के खवाए से खनिज और पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाती। दुधारू पशु जैसन गाय भैंस आदि का कई एक वर्ग के खनिज पोषक तत्व की जरूरत होती। शरीर के विकास और जनन खातिर ओकर आवश्यकता होती। जेखर अधिक मात्रा में आवश्यकता होती वो मुख्यतः खनिज तत्व कहावत है और जेखर कम मात्रा में जरूरत होती उन्हें सूक्ष्म खनिज तत्व कहते। किसान भाइयों, मुख्य खनिज तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एवं सल्फर का शामिल किनगा है और सूक्ष्म आवश्यक खनिज तत्व में आयरन, जिंक, मैगजीन, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट और सिलेनियम का शामिल किनगा है। किसान भाइयों, उन खनिज तत्व जो उन सामान्य चारा में प्रचुर मात्रा में नहीं हो तो खनिज मिश्रण के द्वारा वही पूरा किन जा सकता है। खनिज मिश्रण केवल उन्हीं खनिज तत्वों की पूर्ति करता है जो चारा में पर्याप्त होते हैं। किसान भाइयों, आवश्यक खनिज तत्व शरीर में कई अंग में से काम करता है। हड्डियां और दांतन के अवयव के रूप में ही कंकाल संरचना का मजबूती और ताकत देता है। ये शरीर में कई कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, वसा, जौन, ऊतक, रक्त कोशिका और अन्य मुलायम उत्कन के अवयव होते हैं। किसान भाइयों, पशु पोषण में सभी खनिज तत्वों की आवश्यक भूमिका होती पर कुछ खनिज तत्व विषैला होते हैं, जेखा अधिक तादाद में लिए से वो बीमारी और मौत के शिकार हो जाते हैं। तांबा, सेलेनियम, क्रोमियम एकर उदाहरण है। किसान भाइयों, खनिज मिश्रण के कई फायदा होते हैं। जैसे बछड़न में विकास दर का बढ़ावा है, बछड़न में जल्दी परिपक्वता आवत है, या नर और मादा में प्रजनन क्षमता का बढ़ावा है, पशुअन में प्रजनन अंतराल का कम करत है, पशुअन में भोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि होती, दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती, पशुअन के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती। खनिज मिश्रण के कमी से पशु स्वास्थ्य में हो वाला नुकसान। किसान भाइयों, खनिज मिश्रण के कमी से बछड़न के वृद्धि दर कम होती, कम दूध देव, अधिक उम्र परिपक्व हो, प्रजनन क्षमता में कमी आओ, बांझपन की समस्या, बेर बेर गर्भ गिरजाब और कई समस्या है। खनिज मिश्रण के उपयोग किसान भाइयों, गाय और भैंस खातिर 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन दे

0: चाहे एके अलावा खनिज मिशन दूध उत्पादन के अनुरूप बढ़ाए और घटाए सकित है। दूध न दे वाले पशुअन का 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति जानवर खनिज मिश्रण दे चाहे। बछवा बछियन खातिर 20 से 25 ग्राम खनिज मिश्रण वेटनरी डॉक्टर के सलाह से दे चाहे। किसान भैलो पशुअन के शारीरिक रख रखाव खातिर एक जरूरत होती जेमा कैल्शियम 18 से 20 ग्राम, फास्फोरस 14 से 15 ग्राम और नमक 8 से 10 ग्राम। किसान भैलो प्रति लीटर दूध उत्पादन खातिर 2.8 ग्राम कैल्शियम, 2.0 ग्राम फास्फोरस, 1.5 ग्राम नमक के जरूरत होती।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। गायक स्वर था रंजना जुगलेकर का। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा सुबह 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। चौपाल में शाम 7:21 पर सुनवाया जाएगा अमोल बटरोही का बघेली कविता पाठ। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:20 पर और 9:00। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:05 पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रकयानानि 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीपर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडिंग सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा

0: शिक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अरबन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
1: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई, संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालाकुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मॉनसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुम्भरा क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ जानकारी। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून प्रत्येक वर्ष हमें प्रकृति संरक्षण और सतत विकास की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम खाद्य प्रणालियों की स्थिरता पर केंद्रित है, क्योंकि वर्तमान औद्योगिक खाद्य उत्पादन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 30% हिस्सा है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मोनोकल्चर खेती और लंबी आपूर्ति श्रृंखला जैव विविधता नष्ट कर रही है, मिट्टी की उर्वरता घटा रही है तथा जल संकट को बढ़ावा दे रही है। उत्पादित खाद्य का 1/3 हिस्सा अपव्यय हो जाता है। सतत खाद्य प्रणालियों के लिए स्थानीय एवं मौसमी उत्पादों का उपयोग, जैविक खेती, फसल चक्रण, पौधा आधारित आहार और अपव्यय न्यूनीकरण आवश्यक है। छोटे किसानों का समर्थन, सामुदायिक उद्यान और शहरी खेती भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर हम मांस का कम उपयोग, प्लास्टिक पैकेजिंग से बचाव और बचे भोजन का सदुपयोग कर योगदान दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प करें कि अपनी थाली से पृथ्वी को बचाएंगे। सतत खाद्य प्रणालियां ही स्वस्थ भविष्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे अलका यागी की आवाज में शकील आजमी की गीत रचना। संगीत था रूप कुमार राठौर का। फिल्म का नाम वो तेरा नाम था।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।

0: बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।
1: Union Home Minister Amit Shah will chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, self-reliance in milk, eggs, fish and meat, sports promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts.
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। ये परिषद देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों पर सरकार को सलाह देने वाली सर्वोच्च निकाय है। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्त समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और बीएल वर्मा भी उपस्थित रहे।
1: Panchayati Raj Minister Rajiv Ranjan Singh yesterday said that the government has allocated 4.35 lakh crore rupees under the 16th Finance Commission to the local bodies, reflecting center's commitment to grassroots development. Addressing the National Panchayat Awards NPA 2025 ceremony in New Delhi, Mr. Singh said that rural development forms the foundation of a developed India and that the country's progress is intrinsically linked to the empowerment of villages. Emphasizing the role of technology in modern governance, the minister called for greater adoption of artificial intelligence, digital tools and innovative solutions in panchayat administration. He added that Panchayati Raj institutions are playing a pivotal role in realizing the vision of Viksit Bharat 2047.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। G20 बैठकों के सफल आयोजन के बाद वाराणसी एक बार फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से चित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: The first World Yogasan Sport Championship will begin today in Ahmedabad, Gujarat. The five-day event will bring together more than 500 athletes from over 70 countries, including US, Japan, Netherlands, Oman, Mauritius, Zambia, Uganda, Sri Lanka, Nepal, and Kenya. The meet will feature multiple disciplines, including traditional yogasan, artistic yogasan, and rhythmic pairs across different age categories. The championship includes a wide range of contests for male and female athletes across sub-junior, junior and senior divisions. Prime Minister Narendra Modi will join the event at around 6:40 p.m. today virtually. In a social media post, Mr. Modi said that yoga is gaining tremendous popularity across the world.
0: और भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पांच बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल। कहां से शुरुआत कर रही हैं तन्वी?
1: एंड वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई। The weather department has said that the southwest monsoon is expected to set in over Kerala today. While it is unlikely to bring direct rainfall to the city immediately, its onset may bring a relief from the prevailing heat and humid conditions. With increased cloud cover, cooler winds and a gradual fall in temperatures over the coming days, the interaction between westerlies and easterlies may also increase the chances of evening thunderstorms during the break monsoon period. The city records an average maximum temperature of 37.2 degrees in June.
0: और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पुराने ट्रक और बस को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। 9585 करोड़ रुपए के वित्त परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सके। मीडिया को जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना

0: योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में भी जनता को राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
2: And let's move towards Bengaluru. President Draupadi Murmu virtually inaugurated the semiconductor training fabrication facility at the Center for Nanoscience and Engineering, IISc Bengaluru. Supported by the Ministry of Tribal Affairs, the facility aims to strengthen India's semiconductor workforce through hands-on training in fabrication, clean room operations, device manufacturing, and also characterization. The initiative builds on IISc CENSE's successful semiconductor skilling program, which has trained over 1,400 scheduled tribe participants across India and also awarded more than 1,000 NSQF certifications. And we have some more news from Bengaluru itself. In a landmark initiative, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, in collaboration with the Mercury Foundation, has established the Center for Music, Brain, Mind and Health under the patronage of legendary composer and Padma Vibhushan awardee Dr. Ilaiyaraj. The center will serve as India's first interdisciplinary hub integrating music, neuroscience, mental health, cognition, rehabilitation and technology. It aims to promote research, clinical innovation, education and public engagement while exploring music's role in enhancing mental health and also well-being.
0: और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मलाड इलाके में आकाशवाणी की जमीन पर विश्व स्तरीय एकीकृत फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब विकसित करने के लिए राज्य सरकार और प्रसार भारती द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के गठन को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना मलाड में प्रसार भारती की लगभग 150 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी के समन्वय से विकसित की जाएगी। इसमें आधुनिक फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, IT आधारित सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म और संगीत प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल होंगे।
2: And about Hyderabad, Telangana state has signed a cooperation agreement with Thuringia state in Germany. The agreement focuses on technology, skill training, startups and also life sciences. Minister President Mario Bocchi of Thuringia met the Chief Minister Erevanth Reddy in Hyderabad. He praised Telangana's rapid economic growth and called it a leading center for progress and innovation in India. The Chief Minister Erevanth Reddy emphasized the need for skill training programs suitable for the age of artificial intelligence. He said Telangana wants to train workers for countries like Germany, Japan and also South Korea. The Chief Minister sought support from Thuringia to improve skill training in universities and technical institutes. He also requested help in establishing a German language training program in Hyderabad.
0: और अब बात करते हैं अपने आखिरी महानगर कोलकाता की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। श्री माजी ने बताया कि राज्य की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर केंद्रित चर्चा में रेल विकास पर केंद्र राज्य संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। और महानगरों के जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी।

0: जानकारी शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज का आसार है। अधिकतम तापमान के 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता भी आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: And Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees and maximum will be around 40 degrees. Bangalore is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 22 degrees and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have thunderstorm accompanied with lightning, just like Bangalore. The temperature will hover somewhere between a minimum of 28 degrees and a maximum of 38 degrees.
0: तन्वी, मौसम की भी हमने बात कर ली और अब समय आ चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 4 जून का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया।
1: So let's talk about the year 1783 when the Montgolfier brothers demonstrated the world's first hot air balloon in France. And followed by another year 1878, the Cyprus Convention was signed, placing Cyprus under British administration.
0: और 1903 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। 1917 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पुलित्जर प्राइजेस प्रदान किए गए। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं और आज इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है।
1: In 1937, the world's first shopping cart was introduced in an Oklahoma grocery store. In 1942, the Battle of Midway began, becoming a turning point in World War II.
0: 1959 में आज ही के दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की घोषणा की।
1: In 1989, Poland held its first partially free elections, leading to a victory for solidarity and accelerating the fall of communism in Eastern Europe.
0: और आज ही के दिन 1994 में भारत ने पृथ्वी मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया, जो उसके स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
1: And in 1997, India launched the communication satellite INSAT-2D, strengthening national telecommunications services.
0: और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए।
1: So let's begin with the name Mahendranath Gupta. Today is his death anniversary. He was a disciple of Ramakrishna and a mystic himself. He was the author of many books, be it a Bengali classic, and that was written in English. It is known as the Gospel of Sri Ramakrishna. He was also an early teacher to Paramhansa Yogananda, a famous 20th century yogi, guru and philosopher. Having a devotional nature, he worshipped the Divine Mother in the form of Kali and often reflected the wisdom of his guru Ramakrishna in his daily life and mannerisms. Yogananda reverentially regarded Mahendranath Gupta's spirituality, calling him an incarnation of purity and the greatest man of humility I ever knew.
0: आज पुण्यतिथि है सुलभा देश पांडे की। ये बॉलीवुड और रंगमंच अदाकारा थी। रंगमंच कलाकार सुलभा देश पांडे ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों तथा टीवी सीरियल में काम किया। इन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश फिल्म जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं। सुलभा देश पांडे ने भूमिका अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, गमन जैसी फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाई। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है शांतता कोर्ट चालू आहे। हम इसका ही एक अंश आपको सुनाने जा रहे हैं।
2: प्राण उधळावा तेव्हा तो असल्याचं भाग्य लक्षात येतं, प्राण प्राणापलीकडे जपावा तेव्हा तो उधळण्याच्या गायकीच असल्याचं पडत। काय काय गंमत आहे पुन्हा पुन्हा तेच तसच। जीवन हे असं आहे, जीवन हे तसं आहे, जीवन हे अमुक आहे, जीवन हे तमुक आहे,
3: जीवन हा टरटरा फाटत जा

0: जीवाचा स्वतःलाच डंख मारणारा महाविषारी सर्प आहे.
1: And let's talk about another Marathi personality, and he is Ashok Saraf. Today is his birthday, an Indian actor and comedian known for his work in Marathi and Hindi films along with theater in both languages. Having appeared in more than 300 films, Ashok has received several awards including 11 Maharashtra State Film Awards and 4 Filmfare Awards of Marathi. In 2016, he received Filmfare Marathi Lifetime Achievement Award for his contribution to Marathi cinema, and he has also received Padma Shri, India's fourth highest civilian honor from the Government of India in 2025. So let's hear a comedy dialogue of his from one of his films.
2: Hey, khabardar jo meri beti ko pehri ka.
3: galti ho gayi bas. Ab subah subah tum mat shuru hona meri maa.
2: Kya abhi? Biwi ko maa kehte hue sharam nahi aati?
3: मरने के बाद बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती?
2: बोलूंगी. मेरी बच्चियों को कुछ बोला ना तो हजार बार बोलूंगी.
3: बोलती रहो, एक बार बोलती रहो, हजार बार बोलती रहो. तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहता हूँ. और दूसरा काम ही क्या है मुझे?
4: किससे बातें कर रहे हो?
3: दीवार से. ये अपनी दीवार. सुना नहीं, दीवार के भी कान होते हैं.
2: दीवार के भी कान होते.
3: मेरी शर्ट कहाँ है?
4: छोड़े, फोन पर लगो.
1: So the clip that you just heard was from the TV series Hum Paanch, and I'm sure each and every person has seen the clipping of this series or who you have heard about it.
5: और आज ही पुण्यतिथि है अभिमन्यु अनंत की भी. मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य का सम्राट इन्हें माना जाता था. इन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन किया और 3 वर्षों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे. अभिमन्यु अनंत को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि प्रमुख हैं.
1: And today we are going to remember Bhagat Puran Singh. Today is his birth anniversary. He was an Indian writer, environmentalist and philanthropist. As a young man, he decided to dedicate his life to humanitarian work, and in 1947 he established Pingalwada, a home for the sick and disabled in Amritsar. He was also an environmental campaigner, raising awareness of pollution and soil erosion, and he wrote many books about environmental topics. After the partition of India in 1947, Bhagat Puran Singh worked as a medic in a refugee camp in Amritsar, home to over 25,000 refugees. And he was honored in 1981 by the Government of India with the Padma Shri Award, given for exceptional and distinguished service in any field. And he was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1991 for his humanitarian work.
5: और अब हम याद कर रहे हैं श्रीपति पंडित राध्युल बाला सुब्रमण्यम को, जिन्हें आप और हम जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के नाम से भी. इनकी आज जयंती है. ये देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं. इन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता है. एसपी ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाए. पार्श्व गायक होने के साथ साथ ये एक अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे. एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता. फिल्म मैंने प्यार किया, साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों गीतों ने भी इनके सभी के दिलों को छू लिया.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल

0: और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि

मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह

0: घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and

0: वतन का राज सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांगे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।

उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं, और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार बनवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टो के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसी

देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी, जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसमें आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमन लाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में योगासन को वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की गीत रचना। फिल्म एलओसी कारगिल के इस गीत में आवाजें थी रूप कुमार राठौर, सुखविंदर, हरिहरन, उदित नारायण और सोनू निगम की। अगला गीत है फिल्म कुदरत से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार विशाल शेखर।

लीजिए सुनिए फिल्म उमराव चैन का गीत अलका यागी की आवाज में। जावेद अख्तर के गीत को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

दिल ढूंढता है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। बोल हैं ताहिर हुसैन के और संगीत अनु मलिक का।

अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन का गाया फिल्म सिलसिला का गीत। जावेद अख्तर के शब्द संयोजन का संगीत में ढाला है शिव हरि ने।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

आइए सुनते हैं ओम जय जगदीश फिल्म का गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। बोल हैं समीर के और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

Buzzy. Have a tough one.

0: एंड्रॉयड फ़ोन. सो थैंक फॉर वॉचिंग. कैच यू नेक्स्ट टाइम. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
1: सब्सक्राइब. लीजिए सुनिए फिल्म आन का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में. समीर के गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने.

0: खड़ा हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: पेश है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वर में फैज अनवर की गीत रचना, संगीत निखिल विनय का, फिल्म का नाम कोई मेरे दिल में है।

0: सम क्वेरीज देयर वी मे आस्क और वी मे
1: इस
0: चैट
1: गीत के साथ
0: ऑन
1: ही
0: द
1: फिल्म
0: चैट
1: संगीत का
0: बॉक्स.
1: कार्यक्रम समाप्त
0: यस
1: होता है।
0: देन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स.
2: ओके.

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।
1: सरफराज जी।
2: जी सर।
1: यू आर इंडिया हेड ऑफ एटीसी?
2: यस सर, वी आई एम सीइंग हियर द एज अ सेल्स हेड इन इंडिया।
1: ओके।
2: इंडिया फेस्टिवल पैसिफिक। सर इज इन यूएस एक्चुअली। ही हैज जॉइंड फ्रॉम द यूएस।
3: ही इज सीईओ ऑफ एटीसी लैब्स। या
2: Yeah, he's the CEO yes. and director of ATC Lab.
3: Okay.
1: Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

0: कटनी जिले की चिट्ठी।
1: डॉक्टर सिन्हा साहब, डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी जो
2: प्रस्तुत
1: सीईओ
2: है
1: हैं एटीसी लैब के, वो लेक्चर लेंगे आप। उन्होंने पीपीटी शेयर किया हुआ है, तो सर नाउ इट इज ओवर टू सिन्हा साहब।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी, आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून

0: माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर श्रीजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 26 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: प्रोसेसर, एनकोडर, स्ट्रीमर।
2: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: इट्स अ वन यू रैक माउंट यूनिट। सो बिफोर आई गेट इनटू डेप्थ डिटेल्स ऑफ द ऑडियो प्रोसेसर, लेट मी जस्ट क्विकली पॉइंट आउट व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ दिस।
2: मीडियम वेव 188.3 मीटर, न्यूज ऑन AIRF, OTT वेव्स और DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरमई सवेरा। क्षमा कीजिए, फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।
1: So
2: श्रोताओं हार्दिक वंदन।

0: और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार।
1: Kolkata, Mumbai and Bangalore locations, and it's also used as DSNG WAN encoder and stream decoder. And the third audio processor is Q24 Quad 1, which is the 1U stereo unit, and it's also has been deployed in some locations as AM and DRM processor. So although there are three processors, but the focus today is primarily 624
2: आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत।
1: डिप्लॉयड अक्रॉस अबाउट 115 ऑल इंडिया रेडियो लोकेशंस, सो लेट्स टेक अ डीप डाइव

0: example, you want to put RBDS or RDS data
1: अभी आप सुन रहे थे सुरेश
0: system.
1: वाटकर का गाया भजन. आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के युगल
0: like
1: स्वर में
0: composite,
1: ये भक्ति रचना.
0: Output is also composite baseband composite input. You can feed an external RDS signal or an external pilot using one of these inputs. The unit also has an

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्री
4: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज करना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दिस ट्रेनिंग that hopefully everyone will have some idea what does audio processing.
8: पेश है कवि नारायण अग्रवाल की भक्ति रचना नितिन मुकेश के स्वर में।
7: At the end of this presentation. So if you don't understand that at this point, many of you already know what audio processing is, but if some of you don't

0: अगर हम ये जो म्यूजिक का आइकॉन है ट्यून, इसको टच करेंगे तो इट विल ब्रिंग अस टू
1: अगली गजल हमने ली है बशीर बद्री की, जिसे स्वर दिया है जगजीत सिंह ने।
0: तो चूज वन और साइकिल थ्रू अ फ्यू एंड सी विच वन।

0: be playing with volume control all the time. That you sometime I experience
1: प्रस्तुत है गुलाम अली की गाई गजल.
0: एक सॉन्ग आया उसमें हमने वॉल्यूम कम रखा, दूसरे में उसे बढ़ा के रखा. विद इन अ सॉन्ग यू फील लाइक यू नीड टू चेंज द वॉल्यूम. सो दैट ऑल हैपेंस.

0: आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में सलीम गिलानी का कलाम.
1: साउंड्स लाइक स्ट्रिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स उनको ऊपर उठा के लाने के लिए. एंड थर्ड इज अचीव लो पिच.

0: ओके नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो
1: आइए
0: हियर
1: सुनते
0: इज
1: हैं
0: दैट
1: अभिजीत का गाया नुसरत बद्र का गीत।
0: व्हाई हाई रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाई यू नीड टू हैव लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो क्या होता है कि अगर सिग्नल को कम फ्रीक्वेंसी बैंड में लो फ्रीक्वेंसी बैंड को बूस्ट करने की कोशिश करें तो करस्पॉन्डिंगली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड भी उतनी उसी रेशियो में बूस्ट हो जाएगी। बट इफ यू हैव हायर फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन यू कैन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईच बैंड मोर मोर इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल योर गोल इज दैट यू वांट टू

0: टुगेदर। तो
1: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।
2: सर, ये पीक टू एवरेज जो शुड बी फ्लैट, ये मतलब करते कैसे हैं? मतलब एक बार फिर से बता देंगे, आपने थोड़ा बताया तो।
0: ओके, तो जैसे ये क्या, सो दिस इज द रोल ऑफ एनवेलोप प्रोसेसिंग। सो मतलब इसमें हम शॉर्ट टर्म एनवेलोप कैल्कुलेट

0: आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।
1: सर ये पीक टू एवरेज शुड बी फ्लैट, ये मतलब करते कैसे हैं? मतलब एक बार फिर से बता देंगे, आपने थोड़ा बताया तो।
2: ओके, तो जैसे ये क्या, सो दिस इज द रोल ऑफ एनवेलप प्रोसेसिंग। सो मतलब इसमें हम शॉर्ट टर्म एनवेलप कैल्कुलेट

0: हार्मोनिक्स एंड सब हार्मोनिक्स विल ओनली गेट जनरेटेड इफ योर आउटपुट इज क्लिपिंग.
1: जी नमस्कार.
0: अदरवाइज ऑल दिस प्रोसेसिंग.
1: आपका परिचय दीजिए.
2: हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे.
1: जी साइकिल चलाना जानती हैं?
2: नहीं नहीं.
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में? साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं.
2: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए. पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे. क्या है, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं.
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
2: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल. स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल. तो पहले क्या है, बस का साधन नहीं तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे. हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं.
1: तो देखिए, जब हम वाहन चलाना सीखते हैं ना तो सबसे पहले हमें साइकिल सीखनी पड़ती है.
2: हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है. बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं. वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, ऐसे व्यायाम टाइप का. इसलिए वो गाड़ी नहीं है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके. वो साइकिल फिर अब से खरीदे है. साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब हम बड़े बड़े हो गए.
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने.
2: जी अब वो क्या है, थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं.
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. जी नमस्ते.

0: Ya
1: que
0: me
1: sí.
0: he hecho.
1: I'll have to share it from a
2: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: आपका परिचय बता दीजिए।
2: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
2: मैडम कम से कम 33 साल हो गए मुझे साइकिल चलाते हुए।
0: जी
2: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। वो सबसे बड़ी चीज साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं, जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा, स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, वो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही,
2: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
0: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है,
2: बढ़िया फिट रहते हैं।
0: हाँ शारीरिक बल लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
2: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
2: जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: roughly the processing block diagram
1: Hello.
0: So I'm going to actually
2: Hello.
0: add this to
1: जी
0: the
1: नमस्कार
2: आप कौन बोल रही मैम
1: जी मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ जी हाँ हाँ हो जाता है बहुत लोग बातें करते हैं 10:30 का इसका वक्त होता है तो जानकी गुप्ता जी आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है
3: हेलो सर
2: मैडम बहुत उपयोगी है ना पेट्रोल लगना ना डीजल लगना ना उसका धुआं आने कुछ भी नहीं आने आगे चला ली अपन कहीं जाते हैं साइकिल से
1: तो आपके घर
2: जब हम स्कूल जाते थे साइकिल से जाते थे जब इतनी गाड़ी गाड़ी तो चलती
1: सही बात है अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे
2: अब तो ऐसी गाड़ी चल गई फिर स्कूटी चल गई बच्चा स्कूल हम लोग साइकिल से जाते थे कम से कम 6 किलोमीटर दूर अगर साइकिल खराब हुई तो
1: सही बात है तो जानकी गुप्ता जी आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं
2: हाँ है मैम हमारे यहाँ साइकिल भी है मोटरसाइकिल
1: और उसका उपयोग कौन करता है
2: मेरे पति तो है नहीं मेरा बच्चा है बच्ची
1: अच्छा साइकिल चलाते हैं बोलो
2: हाँ साइकिल ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चलिए लड़की पहले चलाती नौवां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी हम गांव में रह रहा इस समय तो वो कम से कम काफी देर से साइकिल चलाई थी थोड़ी बहुत चला दी भूल सी गई हुई अब कल लगती मम्मी हम भूल गए मंदिर गई थी हमारे साथ तो चलाती गई थी एक लड़की के साथ गई थी दोनों जने चला के गई
1: जानकी गुप्ता जी आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे क्योंकि साइकिल चलाना तैरना ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है ना तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है तो चलिए पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है और पर्यावरण की मांग भी है ना अभी 5 जून को हम पर्यावरण

0: पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा
1: धुएं से होता है
0: हाँ ना, तो
1: बिल्कुल।
0: जहाँ
1: तो
0: संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम,
0: जी जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा,
2: दैट यू नो
0: नमस्कार।
2: वन यू सी द पावर।

0: can collect that, then we can send it.
1: नमस्ते मैडम,
0: send it
1: मैं
0: to them.
1: पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ.
2: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिपेक्ष में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही,
1: होगा वो तो निश्चित.
2: तो हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
1: घड़ी मैडम साइकिल से तो बताया साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है और साइकिल आपकी सस्ती भी है और साइकिल आपको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती. बहुत बढ़िया है साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती किसी प्रकार की परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की हल कर
2: जी जी.
1: इस साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं तथा और नदी पहाड़ सब थे सब जगह चल जाती है. नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ साइकिल बहुत सुलभ है.
2: और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर लेते हैं,
1: कंधे में रख करके ले जा लूँ चल जाती है.
2: चाह रहे थे क्योंकि देखिए आज के परिपेक्ष में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है तो ऐसे में
1: मेरा नाती है मैडम ये भी बहुत साइकिल चलाता है दीदी इससे थोड़ा बात कर लीजिए.
2: बिल्कुल. नमस्ते, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम कबीर जैन है.
2: और कबीर साइकिल चलाते हैं आप? और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
3: अच्छा,
2: तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
3: स्कूल, शॉप और साइकिल से
2: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती है तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए.

0: talked at the same time. Same input can be sent to the transmitter with processing, one type of processing, and to the internet with a different type of processing.
1: Suresh Kumar bol raha Mansoor se. Haan bhaiya.
0: So that Suresh capability ji? Is built in.
1: Haan.
2: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं है ना, स्कूल में जो दसवीं ग्यारहवीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए जरूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं।
1: उनका कहना मन है कि बच्चों को भी माता पिता का भी भाई।
2: हाँ हाँ बिल्कुल सही,
1: मेरा सुझाव ये आपको मतलब बच्चों को माता पिता की जगह कहना मानना चाहिए, पास में का स्कूल बोले पैदल चले जाए साइकिल पे चले जाए, साइकिल क्या है तो मतलब।
2: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे भी बचेंगे,
1: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी शरीर में।
2: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, है ना, एक बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है उसे लेने के लिए,
1: मतलब और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी पेट्रोल गाड़ी वो रखनी पड़ती है, पेट्रोल भी ले सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं
0: लगता
2: है। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
3: That's it. Do you start?

0: تعالسي
1: تعالسي
2: सर ये अपना है क्या
3: जी जी बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए साइकिल नहीं चलानी चाहिए वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की वो कहाँ तक उचित है ना तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं तो ये कहाँ तक उचित है
4: साइकिल तो ठीक है पर्यावरण से पेट्रोल बचता
0: है डॉक्यूमेंट साइकिल
4: तो बहुत ईमेल से किसी को चाहिए तो हमने अपनी ईमेल डाल दी है काम होता था बहुत अच्छा लगता था जहाँ जहाँ जाती थी।
3: हाँ हाँ।

0: सही है मैम, लेकिन
1: अगर
0: बच्चों को
1: किसी
0: नहीं
1: का
0: देना चाहिए,
1: एटीसी
0: जो
1: लैब
0: मेरा सीएम है
1: के
0: उनको तो देना
1: प्रोसेसर
0: चाहिए,
1: से
0: वो
1: रिलेटेड
0: सरकार
1: कोई
0: को ही
1: इश्यू
0: देना।
1: है तो आप मेल
0: नहीं,
1: पे
0: गाड़ी नहीं
1: करेस्पॉन्डेंस
0: देना
1: कर
0: चाहिए।
1: सकते हैं।
0: साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं
1: हमने
0: तो
1: पर्सनल
0: वो
1: भी
0: अपने
1: डाल
0: घर
1: दी
0: के
1: है और
0: सामने
1: जब मेन
0: आसपास
1: अप्लाई कर
0: चलाते
1: रहे हैं
0: हैं।
1: सपोर्ट एट
0: तो
1: atgmail.com हाँ
0: हाँ, नहीं,
1: आप
0: हमारा तो प्रश्न
1: यूजिंग अ
0: खाली ये था कि जो बनावटी
1: फाइनेंशियल
0: दिखावटी
1: फोन
0: जो
1: व्हाट द
0: दुनिया
1: पर्पस
0: है
1: ऑफ दैट
0: उस पे दिखाने
1: प्लीज
0: के लिए
1: आई
0: जो
1: थिंक
0: बच्चे
1: इट्स
0: जिद
1: नाइन टेन
0: करते
1: ईयर
0: हैं ना
1: ओल्ड
0: कि नहीं अब
1: फाइनेंशियल
0: हम
1: फोन
0: साइकिल
1: वी
0: नहीं
1: आर यूजिंग
0: चलाएंगे,
1: बिग मच
0: जरूरत
1: हाँ
0: नहीं है
1: इवन
0: उन्हें
1: दैट
0: बड़े वाहन की, लेकिन तब
1: हाँ
0: भी वो जिद
1: नहीं तो
0: करके
1: पायलट
0: जो है
1: सिग्नल
0: वो स्कूटी और
1: जो
0: मोटरसाइकिल वगैरह
1: ट्रांसमीटर को
0: खरीदने की जिद करने लगते हैं
1: दो ऑप्शन
0: उसकी
1: है
0: हम
1: आपके
0: बात
1: पास
0: कर
1: में
0: रहे थे।
1: इफ यू टेक
0: हाँ
1: डिजिटल आउट
0: दो
1: देन
0: मिनट क्या
1: पायलट
0: वो
1: इज बीइंग
0: किसी ने
1: जनरेटेड
0: काम
1: बाय
0: कर
1: द
0: देता है
1: ट्रांसमीटर
0: अपन के लिए, रोशनी करना
1: बट इफ
0: चाहिए।
1: यू वांट टू जनरेट पायलट
0: बहुत
1: इफ यू
0: अच्छा
1: वांट टू
0: लगा आपसे बात
1: ऑडियो
0: करके, बहुले
1: प्रोसेसर
0: लो
1: टू
0: दीजिए।
1: प्रोवाइड पायलट्स
0: और
1: सो
0: आप
1: दैट
0: जैसे
1: पायलट विल कम
0: सक्रिय
1: आउट ऑन द
0: श्रोता
1: एमपीएच
0: जो हैं,
1: साउंड
0: सुधीर श्रोता
1: देन यू
0: जो
1: हैव टू
0: हैं,
1: यूज एमपीएच
0: कृतज्ञ
1: साउंड
0: हैं कि वो हमारे लिए
1: ऑफ द
0: इतने
1: ऑडियो
0: अच्छे
1: प्रोसेसर।
0: विचार देते हैं और हमारे
1: सर
0: रेडियो
1: व्हाई
0: के
1: वी
0: साथ
1: आर
0: में हमेशा
1: जनरेटिंग
0: जुड़े रहना
1: दैट
0: पसंद करते हैं,
1: नॉइज
0: ये हमें बड़ा अच्छा
1: एक्चुअली
0: लगता
1: ऑन
0: है।
1: दैट
0: चलिए,
1: पर्पस ऑफ
0: बहुत
1: पायलट
0: धन्यवाद
1: इज
0: आपने
1: टू
0: बात की।
1: डीमोडुलेट लाइक गो बैक टू दैट।

0: check that they're listening to which radio station.
1: हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते परिचय दे दीजिए
3: जी
4: सर।
1: आज विश्व साइकिल दिवस है इसी पर आज हम बात कर रहे हैं।
3: थैंक यू वेरी मच
1: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है या आपने किसी को दी है या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बताओ इनाम है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे जब छोटे छोटे होते हैं ना तो एक साइकिल चला रहा है दूसरे के पास नहीं है तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल।

0: तो
1: लेक्चर
0: वो
1: गिवन बाय
0: देखिए मैं
1: यू टुडे।
0: ऐसा है,
1: थैंक यू
0: साइकिल
1: वेरी
0: तो
1: मच,
0: मैम हम
1: थैंक यू
0: अभी
1: थैंक
0: भी
1: यू फॉर
0: चला
1: वेरी
0: रहे
1: मच
0: हैं।
1: क्वेश्चन।
2: हाँ
0: थैंक
2: हाँ
0: यू
2: थैंक यू
0: सर,
2: सर, थैंक यू
0: लो
2: फॉर
0: सर,
2: द
0: अभी भी
2: ऑफ
0: जा रहे
2: साइकिल
0: हैं,
2: से ही
0: साइकिल
2: जा
0: से
2: रहे
0: ही
2: हैं
0: जा रहे
2: हम।
0: हैं हम। और कई
2: हाँ
0: बार
2: सर,
0: ऐसा होता
2: मेल
0: है
2: आ
0: जैसे
2: रहा
0: आप
2: है।
0: बता रही हैं
2: हाँ
0: मैडम,
2: हाँ
0: कुछ
2: ठीक है
0: मित्र
2: ठीक है
0: लोग भी
2: मेल,
0: मांग रहे थे
2: ओके
0: क्या
2: ओके
0: बताया,
2: श्योर
0: हमें एक राउंड लगा के
2: सर।
0: आ रहे
2: मीटिंग
0: हैं,
2: एंड
0: बाद
2: करने
0: में
2: से
0: आपकी
2: पहले
0: वापस
2: पीपीटी
0: कर
2: दे दीजिए
0: देंगे।
2: प्लीज सर
0: ओके
2: मिल
0: कर
2: सर।
0: देता है
2: तो वही हम कह रहे हैं कि
0: हाँ, आप
2: इनाम के
0: पीपीटी
2: तौर
0: शेयर
2: पर
0: कर
2: भी
0: रहे हैं
2: कभी
0: अभी।
2: कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना,
0: जी
2: या पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो
0: जी
2: आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था ये बताइए,
0: प्रसन्न क्या
2: कुछ
0: क्या
2: याद है
0: रही
2: तो।
0: बात, तो जब हम मतलब सीख रहे थे चलाबो मैम, तो
2: हाँ
0: हम यही विनती करते भगवान से कि हम पे साइकिल बन लगे, हम नारियल फोड़ जो बहुत बहुत मतलब बन लगी थी। पर कैदी पहले कैदी सीख रहे थे मैम, तो
2: हाँ
0: कैदी के बाद में फिर डंडा, फिर सीख सीख पे मतलब ऐसे सीख पाए थे।
2: हाँ क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी साइकिल
0: जी
2: होती थी तो कैची चलानी पड़ती थी क्योंकि सीट तक
0: बिल्कुल मैम,
2: तो
0: बिल्कुल।
2: हाँ पैर नहीं
0: और
2: पहुंचते
0: कहीं
2: थे।
0: भी जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
2: हाँ
0: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई तीन जना चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे बहुत
2: हाँ
0: मजा आ रहा था मैम।
2: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना।
0: बिल्कुल मैम,
2: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
0: बिल्कुल मैम,
2: चलिए नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से। मैं
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी, साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: जी तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते, है ना।
1: जी,
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और पेट्रोल बचेगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है।
0: तो ये सब में कंट्रोल होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना जरूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो अब कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है SD वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे। ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज़ है। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोश

रोशनी और प्रांजल राय ने। जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट का। और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा।

0: मीडियम वीप 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 12:30 होने को हैं। आकाशवाणी भोपाल से सुनिए अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी भोपाल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: रहने दूं कि तू सारे गांव में मुंह काला कर आए? इसलिए
1: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है। तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
2: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
2: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
1: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय, किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
1: जो बात है वही कह रही हूँ।
2: सारे, अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
1: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
2: सारे, क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
1: अब्बू अब्बू अब्बू, आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
0: अरे ना माकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
1: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
0: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
1: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
0: कुछ भी हो, अब रसूल तेरा शौहर है।
1: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है। मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
0: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
1: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
2: सारे, एक बार और सोच ले बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे, बोलो?
1: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
0: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
1: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
0: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
1: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
2: सारे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मान?

0: क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
1: अब्बू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अब्बू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
2: तेरा तलाक हो चुका है।
1: हमारा तलाक एक धोखा था।
2: मजहब तलाक मानता है।
1: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
2: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
1: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूँगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
2: सारे देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
1: तकलीफ?
2: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
1: हाँ हाँ, आने दो रसूल को। मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।
2: मेरे घर में रहकर मुझे ही धौंस दिखाती है।
0: फाता, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे, तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
2: अम्मा, तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है, और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
0: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे, तो उसे...
2: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
1: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
2: धमकी देती है मुझे अपनी माँ को।
1: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
0: सारे, अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
2: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
0: सारे, तू अंदर जा। फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है। अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर घोल रखा है। हमें ही संभालना होगा उसे।
2: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
0: अरे, हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है, और वो
2: और क्या, अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
0: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे, अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या

0: वो सच है?
1: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा।
0: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
1: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
0: हाँ? तो तुमने उसे रोका नहीं?
1: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
0: तो फिर क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
1: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूं। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
0: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
1: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
0: ठीक है।
1: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
0: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, दो पैसे जोड़ता हूं, अपने मन से खर्च करता हूं। अरे, सारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हां कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
1: अरे समझाया था
0: अरे, तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराई को अपने साथ घुमा चुका होता। पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूं, पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है। सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
1: हाँ, वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
0: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
1: सारे
2: आई अम्मी।
0: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
0: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ, बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूं तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
0: तो तू मुझे समझेगी कि क्या करना है और क्या नहीं है? अभी बताता हूँ तुझे। औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना। अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना, और तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
1: अरे सारे बेहोश हो गई। अभी छोड़ दे, अब अक्ल ठिकाने आ जाएगी।
3: अरे, ये शोर कैसा है? अरे, सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
0: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई।
3: सारे, उठ मेरी बच्ची, सारे।
1: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
3: अरे तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को। फाता तुम माँ नहीं है। सारे बेहोश हो गई और तुम देखती रही।
0: अरे अब तुम भी अपना रोना बंद करो, मेरी बदनामी करेगी तो सारे के साथ ऐसा ही होगा।
3: बंद करो तुम लोग अपनी हैवानियत, अब तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारे, मैं सारे को अपने साथ कोठी पे ले जा रहा हूँ। सारे, उठ।

0: अबू।
1: अरे बेटा तुम ठीक तो हो?
0: हाँ अबू। अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
1: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
0: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
1: नहीं मेरी बच्ची, नहीं। वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
0: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
1: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
0: अब्बू आप तो मेरे साथ है ना?
1: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
0: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
1: वक्त ने चाहा तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
0: अब्बू, अब्बू, हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
1: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी।
0: अब्बू, मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
1: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसी उठानी है? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
0: पर अब्बू, क्या क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। शशि कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार मनोज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहन, हमें पता है कि आप इस वक्त इस गर्मी में घर में कूलर एसी की ठंडक में रहना ही पसंद करते हैं, तो आप इस वक्त घर पर ही आ जाइए अपने रेडियो सेट के नजदीक, क्योंकि हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। मेरे गर्मी की छुट्टियां आपके साथ इस वक्त थोड़ी सी व्यस्तता भरी हो सकती हैं। बच्चों की घर में धमा चौकड़ी तो चल ही रही होगी और साथ ही आप व्यस्त होंगी उनके ठंडक भरे पेय बनाने में। साथ ही उनको समझाइश भी चल रही होगी कि तेज गर्मी से एकदम ठंडक में ना आए और ना ही बाहर से एकदम ठंडा पानी भी ना पिए। जहां तक हो सके तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। बाहर जाने से पहले लू से बचने के लिए दादी नानी का नुस्खा जरूर अपना लें, यानी निकलने से पहले पेट भर कर पानी पीकर निकलें और फिर अपना मुंह कान बांध कर निकलें। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें लू से बचा सकते हैं। मैंने वैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का भी सबसे सही समय होता है, क्योंकि बाकी पूरे समय कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कोचिंग, तो कभी हमारे कुछ जरूरी काम होते ही हैं। पहले हम लोग नानी के घर जाने के लिए छुट्टियों का इंतजार करते थे और अब ज्यादातर एकल परिवार होने से बच्चे अपनों से ही दूर हो जाते हैं, तो कुछ समय ऐसा जरूर निर्धारित करें कि हमें अपनों का साथ मिल सके। इसके अलावा कई लोग घूमने भी जाते हैं, वहां की जानकारी लेते हैं और बेहतर समय परिवार के साथ बिताते हैं, तो कुछ लोग अपनी रुचि, अपने हुनर को और अधिक अच्छे तरीके से सीखने में समय बिताते हैं जो भविष्य में काम आ सके। कुछ रचनात्मक शौक पूरे करके अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। मैंने बातें आपसे और भी करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, ये तो आप भी मानती ही होंगी कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में, जिस आकार में ढाल दें, वही रूप बस ले लेते हैं। हम चाहें तो उन्हें बचपन से ही सुसंस्कार से सज्जित कर दें, या फिर उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें। उनके सामने लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपशब्दों का उपयोग करके उनके मन में कुंठा भर दें। जब घर में, समाज में बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो ही उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही जन हानि भी होती है। जाने कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोगों का, अपनों का साथ भी छूट जाता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं छोटे निर्दोष मासूम बच्चे, जो इन सभी बातों से बेखबर होते हैं। जो उम्र उनके माता पिता पर निर्भर रहने की होती है, उस उम्र में वो बेघर हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी। अपनी 31वीं पूर्ण बैठक में, अपने पुनः शुरू हुए 7वें आपातकालीन विशेष सत्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर विचार करते हुए इजराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की बड़ी संख्या से सद होकर हर साल 4 जून को आक्रामकता के निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार करना है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आखिर उन्हें भी तो एक स्वस्थ, अच्छा जीवन मिल सके, इसके लिए एकजुट होकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास ही तो है ये। बहनों, आखिर ये मासूम बच्चे अपनों से जब दूर होते हैं, तो उनकी याद उनके जहन में जरूर होती है। उस समय, खासकर युद्ध के समय, कुछ भयानक दृश्य उनके मानसिक पटल पर गहरी छाप भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। और वह मानसिक रूप से प्रभावित

बच्चे छोटी छोटी चीजों से या कुछ भी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने पर मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। इस स्थिति में दवा के साथ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की भी जरूरत होती है। ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं और उन्हें न केवल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती हैं, बल्कि उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती हैं। इस दिशा में ये आक्रमण से पीड़ित बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा सहारा, भावनात्मक लगाव उन्हें संभाल लेता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके और आर्थिक रूप से भी ये सक्षम हो सके। आखिर मासूम बच्चे मन के तो सच्चे होते ही हैं, जल्द ही संभल भी जाते हैं।

0: पहले हम सभी की चाहत होती है कि मन प्रसन्न रहे, हम आप सदा मुस्कुराते रहें। कभी कभी हमें किसी की मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है। अगर हमारे दांत स्वस्थ हों, सुंदर हों, तो हम खुलकर हंसते भी हैं। कई बार हम दांतों के रोग को नजरअंदाज कर देते हैं और तकलीफ ज्यादा हो जाती है। दांतों का ही एक रोग है पायरिया। आज हम स्वास्थ्य भेंटवार्ता में जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, दांतों में होने वाले रोग पायरिया, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी ने और उनसे बातचीत की है हमारी सखी संयोगिता ने।
1: श्रोता बहनों, मुस्कुराता चेहरा हर किसी की चाहत होती है। उस मुस्कुराहट के पीछे मोती जैसे दांत सोने पे सुहागा जैसा काम करते हैं, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके दांतों में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, पीलापन होता है या किसी प्रकार का रोग होता है। दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में आज हम जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, जो हमें दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों में होने वाला पायरिया रोग है क्या?
2: देखिए, पायरिया रोग तो जो है ये मुख्यतः जो दांतों में गंदगी रहती है, जिसे कि हमने अपने डेंटिस्ट्री की भाषा में प्लाक सरफेस या टाटर या कैलकुलस कहते हैं, और आम भाषा में इसको अपन पपड़ी का बोल देते हैं, कि जो अन्य के कण हैं बारीक बारीक, दांत और मसूड़े के बीच में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये रोग होता है। इस रोग में पहले तो हल्की फुल्की तकलीफ होती है, पेशेंट को ब्रश करने पे खून आता है, और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ जाता है तो मुंह से बास आने लगती है, ठीक है, और लेट स्टेज में पूरे मसूड़े पिलपिले टाइप के हो जाते हैं और इससे मवाद निकलने लगता है, और ये मवाद पूरा अपने मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट के द्वारा अपने पूरे शरीर में फैलता है, जिससे कि अपना जो शरीर है ये डल टाइप का हो जाता है, और अन्य फुर्तीला, जिसे बोलते हैं कि शरीर में फुर्ती नहीं रहती है, आलस बना रहता है, आदमी चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसलिए ये रोग का इलाज होना अति आवश्यक है।
1: मतलब दांतों का जो पायरिया रोग है केवल दांतों तक ही सीमित नहीं है, ये दांतों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल सकता है।
2: बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कई लोगों को डायबिटीज रहती है, अगर डायबिटीज किसी के उन डायबिटिक पेशेंट को अगर पायरिया रोग है तो उनकी डायबिटीज भी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो जैसे कई मरीज बोलते हैं, साहब हम तो दवाई लेते हैं, पैदल रोज चलते हैं, खान पान का परहेज रखते हैं, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है।

0: उसके लिए अगर किसी को पायदिया रोग है तो उसका इलाज कराना अति आवश्यक है, तभी उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो पाएगी।
1: मतलब साधारण रूप से हम दांतों की इस समस्या को ना ले, हाँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि इससे देखिए एक तो पेट की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज का भी फर्क पड़ सकता है, और कोई भी खराब चीज अगर शरीर में जा रही है, पस अगर शरीर में जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई तो रोग उत्पन्न करेगा शरीर में अंदर।
1: शुरुआती लक्षण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस तरह से?
0: शुरुआती लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश करने पे खून आना, मुंह से बास आना, मवाद निकलना, ये सब लक्षण है पायरिया रोग के।
1: तो कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि हम जैसे ब्रश कर रहे हैं तो एक आध बार मतलब दांतों से ब्लड हमें दिखाई देता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर हम करते हैं तो फिर कभी दांत में दर्द होता है, तो क्या ये भी पायरिया के अंतर्गत आता है?
0: पायरिया, क्योंकि जब ब्रश करने में ब्लड जो आना, ये पायरिया रोग का ही लक्षण है। ये
1: मतलब हमें चिकित्सक के पास जाना,
0: जाके इसका इलाज कराना चाहिए। इसका जो इलाज है, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इलाज के लिए जैसे कि हम लोग सिंपल जो है, पहले अगर कम स्टेज में रोग है, जैसे सपोज करिए कि ब्रश करने पे खून भरा आ रहा है, तो उस अवस्था में सिर्फ दांतों के अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के द्वारा सफाई करके इस रोग को ठीक किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ गया है जिसमें कि मवाद आने लगी है, मुंह से बास आने लगी है, तो उसमें हम लोग मसूड़ों की सर्जरी करते हैं। फ्लैप सर्जरी है, जिंजाइबोप्लास्टी है, जिंजिवेक्टमी है, मसूड़ों के अलग अलग प्रकार की सर्जरी रहती है वो करते हैं। और जो आजकल लेटेस्ट कर रहे हैं वो हम, मैं जो करता हूँ वो डेंटल लेजर के द्वारा इस रोग को खत्म करता हूँ। जो मसूड़ों की सर्जरी मैनुअली करते थे तो वो आजकल लेजर के द्वारा हम करने लगे।
1: मतलब ये सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध है,
0: जबलपुर शहर में है उपलब्ध, ये
1: कि लेजर के माध्यम से भी पायरिया का इलाज,
0: उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है।
1: मतलब लेजर के माध्यम से भी आजकल पायरिया का इलाज हो सकता है।
0: जी,
1: तो ये किसी तरह की घबराहट हमारे सुनने वाले अपने मन में ना रखें कि डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: लेजर का एडवांटेज भी बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैनुअल सर्जरी करते हैं उसमें इंजेक्शन लगा के शून्य करा जाता है, मसूड़ों को खोल के टांके लगाए जाते हैं, हैवी दवाइयां दी जाती हैं। लेजर में ये फायदा है कि शून्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेशेंट को करते समय कोई तकलीफ नहीं होती है, बाद में बहुत हैवी मेडिसिंस की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये थोड़े से फायदे हैं लेजर के,
1: ये बेनिफिट हम लेकर जाते हैं अपने साथ में। अच्छा, ये पायरिया रोग क्या उम्र का भी इस पर कोई फर्क पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी हो सकता है, या एक उम्र पार करने के बाद ही पायरिया के लक्षण पाए जाते हैं?
0: ये रोग तो किसी को भी हो सकता है, बाकी जो उम्र की जहां तक आपने बात करी तो ये जो रोग है ये 12-13 साल के बाद ही डेवलप होता है। जब पूरे बच्चों के पक्के दांत आ जाते हैं तभी ये रोग डेवलप होता है, और लेट स्टेज में, अन्य 40-45 के बाद में ये इसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं मरीजों में।
1: जी जी, तो मतलब उम्र का भी फर्क पड़ता है, मतलब छोटे बच्चों में नहीं होता है, 12-18 जैसे आपने बताया,
0: 18 मतलब 14-15 साल के बाद से लेके 40-45 साल की एज में ज्यादा मिलते हैं। और ये जो रोग है गाँव वालों में, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं उनमें ज्यादा रहता है, शहर के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये अपेक्षाकृत कम रहता है ये रोग। ये
1: अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग ज्यादा देखा गया है, तो किस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा शिकार होते हैं? क्या वो जो परंपरागत दातून करते हैं उस वजह से है, या शहरी लोग हम जो करते हैं वो ब्रश लेते हैं इस तरह?
0: दातून करना बहुत अच्छा है काम, दातून के लिए तो बिल्कुल भी, दातून तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी ये जो शहरी लोग को जैसे मैंने बताया कम होता है, क्योंकि अपन पेस्ट और ब्रश करते हैं तो जो अन्य के कण है वो दांत और मसूड़े के बीच में नहीं जम पाते हैं। गांव वाले जो है सिर्फ दतून करते हैं और अंगुली से मंजन कर लेते हैं।
1: जी जी,
0: अगर वो ब्रश का उपयोग करें साथ में तो फिर ये उनका जो मैल जो जमता है, जो अन्य के कण जमा हो जाते हैं वो जमा नहीं होंगे।
1: नहीं, तो धारणा तो ये भी सर कि हम अगर ब्रश करते हैं तो दांतों में होल ज्यादा होता है ब्रश से?
0: नहीं, होल नहीं होते दांत, क्या है कि किसी भी चीज को अपन ज्यादा घिसेंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीज घिसेगी। ब्रश ऐसा होना चाहिए कि जो अन्य के कण फंसे हैं वो दांत और मसूड़े साफ हो जाए, ब्रश ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत मोती समान चमकते रहे अपने चमकाने के उद्देश्य से,
1: तो नुकसान नहीं हो।
0: 2-4 मिनट तक ब्रश करें वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए।
1: किस तरह की सावधानियां रखें कि दांतों में पायरिया रोग ना हो?
0: सावधानी जो है, जो मुख्य है सावधानी, वो साफ सफाई है। जैसे कि अपन सोचते हैं कि सुबह और शाम को ब्रश कर ले तो अपने दांत स्वच्छ रहेंगे, अपन को रोग नहीं होगा मुंह का, ये बिल्कुल धारणा गलत है। मेरा ये कहना है कि अगर अपन कुछ भी चीज खाते हैं, दिन में अपन 10 बार कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं, उसके बाद सादे पानी से कुल्ला बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि जो अन्य के कण जो फंसे हैं दांत और मसूड़े के बीच में, या कोई चीज पिए तो उसकी जो लेयर अपने मुंह के अंदर या दांतों के मसूड़ों के ऊपर जम गई है वो पूरी धुल जाना चाहिए, और सुबह और रात को अच्छे से

0: ब्रश करके सोएं और कुछ भी चीज खाए पिए उसके बाद कुल्ला बहुत अच्छे से करें। हरी सब्जी फल इनका उपयोग करें, जो मीठी चीजें हैं चॉकलेट्स वगैरह हैं इनका उपयोग ना करें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सकता है। और जो बैड हैबिट्स हैं बीड़ी तंबाकू सिगरेट इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए,
1: ये भी मतलब खतरनाक
0: ये रोग के कारण है ये सब।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैंने अभी सुन रही थी स्वास्थ्य भेंट वार्ता, दांतों में होने वाला रोग पायरिया, इस विषय पर डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी से सहयोगिता की बातचीत। दिनो एक बार फिर हम गर्मी की छुट्टी पर आते हैं, तो क्यों ना एक बार कुछ अपनों से और बच्चों से अलग करवाया जाए। तो बच्चों की पूरी छुट्टी व्यस्त रखना भी जरूरी है, और व्यस्तता भी ऐसी कि छुट्टियां सार्थक हो जाए। वो जो भी सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी घूमने गए हैं या घर पर ही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी पूरी छुट्टी में, उसके लिए उन्हें एक डायरी दे दी जाए और उनसे कहे कि हर दिन अपना अनुभव इसमें लिखें, भले ही 4 लाइन में लिखें या 6 लाइन में। इससे आजकल जो बच्चे कॉपी किताबों से पढ़ने के शौक को खत्म हो रहा है वो विकसित होगा। और उन्हें बताएं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके थोड़ा सा लिखें, और हर रोज हम उन्हें कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी बताएं, जिससे उनका भाषा सुधार होगा, शब्दकोश में वृद्धि होगी और उनकी राइटिंग में भी सुधार होगा, लेकिन उन्हें छोटी छोटी गलतियों का पता भी चलेगा। और अंत में उन्हें अपनी छुट्टियों का सार लिखने को भी कहें, निश्चित रूप से हम उसे हर दिन देखते भी रहें, इससे उनके विचार उनके भाव हमें पता चलेंगे। इस बारे में आप हमें भी जरूर बताएं। तो बहनों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: कवि हेमंत देवलेकर।
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार है संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईश्वरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार है नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनुपम फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्में लेने आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडिया वेव 188.3 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान्न सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। उसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया। मैंने सीआरपी का काम करा, इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान एनजीओ में बारी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपए है और मैं खुद खबर कर सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार

सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर

मजबूत होगी। झाबुआ में जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो

0: मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष

0: नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज नेहरानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशल मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहे बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पधराया रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराय, प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा।

कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने, तनिष्क बागची का गीत और संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्राय लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ समीर का लिखा आनंद बख्शी

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज। इस गीत को सुनना चाहा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी,
1: एक लड़के पे वो मरती थी।
2: अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का, मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है हनन बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्राया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: केके की आवाज में गए तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,000

800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे 8:35 पर और रात 9:30। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:42 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार है संगीता उपाध्याय। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं ईश्वरी चौगड़िया।

0: साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथी DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया।

सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री दीक्षा की कला को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने पर बधाई दी है। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की दाल के 12 दानों पर ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी, आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कान और कुछ खास पल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आज का आपका रेडियो दोस्त अनमोल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ी सी राहत का और कुछ प्यार भरी बातों का और शानदार संगीत का।
0: बिल्कुल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का ये समय अपनेपन और सुकून का होता है, और हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को आज के दो प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? और आज का दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
0: साथियों, इनके जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उससे पहले इस शाम को और भी सुरीला बनाते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने, और जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से।

0: वापस स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। अंकिता, कभी कभी लगता है ना, पहले मौसम कितने अच्छे हुआ करते थे। पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छाव, साफ हवा और बारिश की वो खुशबू।
1: लेकिन अब सब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक और कटते हुए पेड़ दिखाई देते हैं।
0: और सबसे हैरानी की बात ये है कि इंसान खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी खराब माहौल की शिकायत भी करता है।
1: हाँ, और क्या, हम खुद के स्वार्थ में भूल जाते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अब आज गर्मी हर साल बढ़ रही है, बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने का असर है।
1: पर पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बदलाव भी ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: और दोस्तों, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुंदर वातावरण मिल सके।
0: साथियों, इसी वादे के साथ अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हम हर बार एक आइडियल पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात करने आते हैं और उनके जीवन से जुड़े महान कार्यों को जानकर उससे प्रेरित होकर उनको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपसे बात करने आए हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आजादी की राह, सेवा की चाह, अमृत कौर की यही पहचान है।
0: इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे और इनकी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी इंग्लैंड से पूरी हुई थी।
1: लेकिन संपन्न परिवार से होने के बाद भी अमृत कौर ने अपना जीवन सादगी से जीना चाहा। देश को स्वतंत्र कराने, सामाजिक विकास करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए।
0: वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और उनका कहना था कि शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए।
1: महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
0: इस तरह अपने राजनीतिक करियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने कई बड़े पदों पर काम किया। 1947 में भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया।
1: इतना ही नहीं, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थी और इस तरह सेवा, समानता और स्वास्थ्य ही अमृत कौर का संकल्प बन गया।
0: आजादी की राह पर उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी काम किया। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस तरह लोगों को जागरूक करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत कौर जीवन पर्यंत प्रयास करती रही।
1: साथियों, 2 अक्टूबर 1964 का दिन भले ही अमृत कौर के जीवन का आखिरी दिन रहा हो, लेकिन उनके सराहनीय कार्य और उनके योगदान को आज भी उतना ही याद किया जाता है।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को। उरी फिल्म से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की

0: अंकिता, आज मैं बहुत खुश हूं।
1: क्यों?
0: क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब से फर्स्ट सैलरी जो ली है।
1: अरे वाह अनमोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज तो तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ रही होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता, खुद की मदद करके किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक जब आप अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं, तब ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
1: सही कहा अनमोल, आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक्टिव है। वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक भी है। किसी कार्य को करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में है और इससे जुड़कर किस तरह हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और रोजगार भी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान आज हमारे देश का नागरिक रखता है।
0: आज वो खुद की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना किसी सहारे के स्वसहायता से व्यक्ति स्वावलंबन की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की जागरूक होती महिलाएं भी घर के साथ साथ बाहर निकलकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं।
1: और दोस्तों, इस राह में सरकार के कई प्रयास जैसे रोजगार योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे विकास के कार्य भी जारी हैं।
0: तो दोस्तों,

0: अगर आप भी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों को जागरूक कर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है।
1: और उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म से इस गीत को।

0: घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अलविदा कहने का समय हो चला है।
1: लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिसका उत्तर है प्रशांत महासागर। साथियों, उम्मीद है आज की ये शाम, हमारी बातें और संगीत की ये पल आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ गए होंगे।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल अपने लिए चुरा लेना भी जरूरी होता है, और हमें खुशी है कि आपने उन पलों में युववाणी को शामिल किया।
0: साथियों, हम फिर लौटेंगे नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त अनमोल द्विवेदी
1: और आपकी रेडियो दोस्त अंकिता को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नसीब से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

फिल्म नसीब के बाद अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी हैं। अनुन बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: कवि हेमंत देवलेकर,
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। नीचे प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: आईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।

0: से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
1: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेडके जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोवी का शीत मरुस्थल।
1: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
1: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
1: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खासतौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ?
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वह आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
4: सर।
5: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर

0: दिया। और
1: हाँ बोलो बोलो।
2: सर हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
2: 5000 वर्ष पहले?
3: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
3: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
2: अच्छा।
3: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
3: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
3: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
0: भरत नाम तो हमने सुना है।
3: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
3: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
3: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
3: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
3: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
3: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
3: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
3: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
3: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
3: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
3: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
3: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
2: सर ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
3: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
3: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
3: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
3: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
3: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
3: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
3: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में

0: भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में

0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्राय स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने

0: एक ही लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या
2: मिल गया मुझे? माँ
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: मुझे मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया
3: सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा? बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन, स्टीफन माँ, माँ, माँ सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें?
1: हैं? हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा।

0: जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेब डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए का एक गीत। आवाजें हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और सुनते हैं ये गीत।

ये गाना था फिल्म शान का, और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ये गाना था फिल्म हम का, और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा का। इसकी इसमें आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं और ये समय होता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है।

है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरूआत केवल एक नए वाहन की शुरूआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा विभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन सकते हैं पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति होगी। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रदेश लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, यानी कि ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नजर डालते हैं कल यानी 5 जून शुक्रवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिस्किया की 10वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें 1 बजे महिला कार्यक्रम।

कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और रात 9:45 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा कल दोपहर 2:30 पर और रात 10 बजे। 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, इसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, वार्ताकार होंगे नवेद इशरत। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन, ताल होगी रूपक ताल। और ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर गांधी चर्चा, 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम महिला संसार और 10:30 पर सुबह आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन, जिसमें आप सुनेंगे ताल पंचम और साथ ही सवारी ताल। और कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे।

0: अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभ्रा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
4: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली

स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं

दे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के सवे सुनैयन का हमार मनसुख भाई के जथा जोग राम राम। भैया बहनी देखी अपना पंचे जानी थे कि बड़ी मछली छोटी मछली के शिकार कर रही थी, मानो ताकतवर लोग कमजोर लोगन के ऊपर आक्रमण कर रहे। कबो कबो यह देखे को मिलत है कि निर्दोष बच्चन पर छोट का अगर गलती भय तो लड़कन का लोग चौथरिया दे थप थोड़ देत, पर ऐसा न करे चाहिए। अपने देश भर में नहीं पूरी दुनिया में निर्दोष बच्चन का आक्रमण के शिकार होत में नहीं देखत है। हाँ भैया बहनी, दुनिया भर में हिंसा युद्ध और आक्रामकता के कारण शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से बच्चन के शोषण होत है। और देखी अगर शोषण के शिकार होए वाले बच्चन के दर्द और पीड़ा से छुटकारा दिलावे का है तो ओके नीता मानो हर बरिश या पूरे देशन मा 4 जून का आक्रमण के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावा जाता है। मानो आज मनावा जा रहा है हर जगह। और यह दिवस के जौन उद्देश्य है वह यह है कि बच्चन पर कौनों

पेड़ के अत्याचार न हुए। ए दिवस की स्थापना 19 अगस्त 1982 का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थे। भैया बहनी देखी, आक्रमण के शिकार निर्दोष बच्चन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस जौन मनावे की शुरुआत जौन भय रही वो सबसे पहले लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चन के बड़ी संख्या में मौत भय रही और बच्चन के मौत पर लोग गहरी चिंता और प्रतिक्रिया व्यक्त करे कि नेता यह दिवस मनावा जाता है। भैया बहनी देखी, 4 जून के दिन बच्चन के अधिकारन के रक्षा करे चाहिए और संघर्ष करे वाले बच्चन का कौनो प्रकार से नुकसान न हो ऐसे बचावे चाहिए और एक नेता संयुक्त राष्ट्र में जितने सदस्य देश जुड़े हैं सब जने प्रतिबद्धता के साथ एकर पुष्टि करा था, एका मनावा था और ये दिन में जौन देश है विदेश है सब माँ हर मेर से जौन है तो लोग वह कह रहा था। और देखी बच्चन का सुरक्षा के अधिकारों मिले चाहिए, काहे के बच्चा सच्चे हो था ना, कहा था ना बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चा मन के सच्चा हो था उनकर सुरक्षा के अधिकार के को करी, मतारी बाप ना करी ही, समाज न करी, परिवार न करी, देश न करी, सब जने का अपने लड़का छेहरन के देखभाल करे चाहिए और लड़कन का देखिए अपने संविधानों में ना सुरक्षा के अधिकार न मिला है, सुरक्षा के अधिकार तो देखी सबका चाहिए और निर्दोष बच्चन पर कौनो मेर के अत्याचार न होए, हिंसा न होए। और यहीं से कुछ सरकारी संगठन हाँ और कुछ गैर सरकारी संगठन हाँ सब मिल के एम प्रयास में रहा था कि बच्चन पर अत्याचार न हो, निर्दोष बच्चन का परेशान न कीन जाए। और भैया बहनी यही कि नेता रिलीफ इंडिया ट्रस्ट बनावा गा है जौने से बच्चन के जीवन का सुखमय बनावे कि नेता विशेष देखभाल परामर्श चिकित्सा सहायता यह सब होते। और हाँ एक बात का और ध्यान रखा था कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण हर मेर के कौशल जौने पीड़ित बच्चन माँ कौनों में हीन भावना न आवे बची रहा है और सबके बीच देखी सामंजस्य के वातावरण हो चाहिए। हिंसा से जौन प्रभावित बच्चा हाँ पोषण और सुरक्षा वातावरण उनका मिले, सामाजिक समाज में जौन लोग हाँ तो उनकर बराबर के हक मिले, कहाँ से कौनों मेर के उनकर हक न छीना जाए। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में रिलीफ इंडिया ट्रस्ट यह जागरूकता फैलावा थी, जागरूकता अभियान और बच्चन के दुर्दशा पर प्रकाश डाला थी, बच्चन के देखभाल करे चाहिए। देखी बच्चों लोग कहाँ चले जा था पर नौकरी चाकरी भर कर है, पर लोगन का अपने गांव से इतना मोह रहत है, गांव इतना प्रिय लागत है कि गांव की माटी चंदन कस लागत थी।

0: अबे मने या विकास गीत सुनें जो ने का गावत रहे हैं संजय कुमार पांडे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में

0: ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: भैया बहनी, देखी अपने चौपाल कार्यक्रम में मेर मेर के विधा प्रस्तुत होती है। जैसे कुछ विशेष कार्यक्रम होता ना, जैसे सोमवार का मनई का सुनत है उखान कहावत, शनिचर का मनई का होत है रंभस, इतवार का बतकहाँ, ऐसे आज हुआ गुरुवार यानी बिहफय, तो बिहफय का मनई सुना करत है कबो बघेली कविता पाठ या कि बघेली कहानी। तो आज हुआ बघेली कविता पाठ के बारी आवाज अपने कार्यक्रम में पधारे हैं अमोल बटरोही जी, ले उनसे बघेली कविता पाठ मने सुने।
2: आज हम अपना पंचन का मेर मेर के सवैया सुनाए रहे हैं। पहले थे मंगलाचरण के सवैया सुनाई थे, एक बार और सवैया सुनाओ। देखी सुनी कि जे भूइया के भलाई करे पर सारथ खीती रे दुख उठावे, अब भी

और दैया पर एक सवैया लिखन के काज में जो बर बाप कुछ हठिले यू है सब दैया कहावे।

कुछ लिप्टिस खूब लगाई रहे हैं। अब देखी या प्रदूषण फैलत जाला है, ओजोन परत कटत चली जाला ही, ओके खातिर चाल लाइन कहन कि भाई ओजोन का बचावा।

गाय के गोबर से गोमूत्र से कितना लाभ है, फल है। तो इतने में लोग कहते कि वह बेतन्नी वाली बात तमाम करा था। हम कह नौका करे की जरूरत नहीं देखी कि गाय के गोबर गाय के मूत लगाई चमड़ी चमकई जैसे।

देखी थोड़ा हाथ से लेके ये थे सवैया लिखे ने कुछ लोग तमाम धंधा तो अपना सुने रहे नो पे कजहाई वाला धंधा ना सुने नो देखी एक चार लाइन के काकू हमाया कसेले आषाढ़ से पूस भरे।

आई कहन के भाई लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर देश खातिर कुछ नहीं दीन, प्राण तक नहीं दीन, तो वो बड़े ना हो। देखिए एक सवैया के

अब है मनई अमोल भट्टरोही जी से या बघेली कविता पाठ सुनन। और भैया बहनी अपना पचे जानी थे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पूरे देश में ओकर खुशी मनाई।

0: आ रही है, यानी रेडियो के बात गांव के लोगन से, गांव के लोगन के का भावना है, का विचार है, तो लई मनई सुनत है विष्णुकांत शुक्ल जी से आकाशवाणी के बारे में ये चर्चा।
1: अपना प्रेम के सबका मनसुख भाई के से राम राम। अपना बजे जानी थे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 90 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग लोगन से जनवही ले थे, लोगन से पूछी थे कि उनका अनुभव साझा करी थे कि अपना का आकाशवाणी कार्यक्रम कब से सुनें, का करें, सब कुछ। तो आज आपन विचार साझा करे किंता हमारे साथ हाँ अपने रीवा जिला के मनगवा तहसील के सुकुलगवा गांव के वकील साहब, नोटरी साहब, एडवोकेट विष्णुकांत शुक्ल जी। अपना के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हमारे तरफ से अपना वचन का सब जन का राम राम प्रणाम।
1: चिया बताइए अपना की उम्र कितनी हुई?
2: हमारा उम्र मान ली 53 वर्ष है।
1: बताई के आकाशवाणी कब से अपना जाने लागे, कब से सुने लागे, और का अनुभव अपना के आकाशवाणी के प्रति है?
2: मान ली मनसुख भाई यदि आकाशवाणी के बात कीन जाए
1: जी,
2: तो हमारे जब से हम जाने लायक हैं
1: जी,
2: तब से हम आकाशवाणी का जानता है
1: जी।
2: ओखर मुख्य कारण यह रहा कि हमरे गांव के निकहा कलाकार
1: जी
2: बैजू भाई
1: जी
2: चौपाल कार्यक्रम में आवत रहे
1: जी।
2: उन्हें रेडियो ले आए, उनका पिताजी बहुत शौकीन व्यक्ति रहे
1: जी
2: गान तान का। फिर हमरे टोला में हमरे घराना में रेडियो आवा, तो रेडियो के जौन वा शुरू में आवाज आवत रही स्टार्टिंग वाली, वह धुन मान ली कि अजवा हृदय का बिल्कुल उत्साहित कर दी थी। और रेडियो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और रेडियो हम लोग सब मैंने हमारे घर के सयान सुनत रहे
1: जी।
2: फिर हम पंचे सुने घर के बाजा मगामा के रेडियो ले आवा, तो ले आई फिर ले उते में गली में चालू कर देई। अब फिर सब तरह से सुनी था रेडियो।
1: तो रेडियो माँ अपना यह बताई कि कौन कौन प्रोग्राम अपना का नीक लागत रहे और के नीता प्रोग्राम आवत।
2: देखिए रेडियो माँ सबके प्रोग्राम आवत रहा, युवन के खातिर युवा वाणी आवत रही, कलाकारन के महिलन के खातिर लोक रंजनी कार्यक्रम आवत रहा,
1: लोक संगीत है,
2: लोक संगीत, लोक गीत, यानी कि लोक रंजनी एक कार्यक्रम रविवार का आवत रहा।
1: लोक गीत है, लोक गीत,
2: लोक गीत है, लोक गीत है। उमा ब्याह बन रासो हर तो सब मेहरिये ओकर समय लगाए जाते नहीं कि काम का जल्दी कर ले
1: लोक रंजनी।
2: हां इत्तेदार लोक रंजनी कार्यक्रम।
1: अब एथे यह रहा कि सबके लगे पहले घड़ी नहीं रही, मोबाइल नहीं रहा, तो लोगन का अंदाजा न होत रहा है कि इतने बजे यह कार्यक्रम है, तो समय की गणना घलाए।
2: बिल्कुल मनसुख भाई बहुत सही कह लागत ना। एक रेडियो जो रहा बाजा जो रेडियो कही थे, तो एक हर महरियन का घर के कामकाज लोगन का जो टाइम कह रहा यह रहा कि अभी आकाशवाणी शुरू हो लगी, अभी मानस पाठ हो गया, तो हमका चाय नाश्ता दे चाहिए सब जागे आए हाँ, कृषि संकेत होगा, अब और समाचार आ गया 8 बजे, सब काम के फिक्स रहा। अब बहुत जानवर्धक रहा रेडियो, अब बहुत अच्छा सबके खातिर कार्यक्रम आवत रही।
1: और अब देखी रेडियो में सगले कार्यक्रम बहन आवत है, अब तो मोबाइल में ऐप आएगा है न्यू ऑन एयर, वो का अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपन अनुभव बताई के का कैसन रेडियो के बारे में?
2: रेडियो के पहले बड़ा प्रचार प्रसार रहा
1: हाँ।
2: रेडियो का लोग दान उन में देत रहे, जैसे बारात और आप काम शादी समारोह,
1: शादी ब्याह
2: माली रेडियो साइकिल मिलत रहा। जब रेडियो जेके मिल जाए तो फिर वह रेडियो कांधा में टांग ले, साइकिल में टांग ले, खेत किस खेती के काम करे तो मेड़ी दरा आराम में धले, आग में धले,
1: और सगले गांव में बागे के गाय के हम शादी भी आए वाले
2: रेडियो पान है, वो का बड़ा प्रचार करे, वो के नात भाई में नाव चले के फलाने हमरे रेडियो पाई। यह तरह से रेडियो के बड़ा बड़ा महत्व रहा। रेडियो से बड़ा जानवर्धक चीज मिलती रही, जानकारी होती रही, नाम गांव होता रहा, एक और मजे के बात होती रही जो यार रेडियो में मुख्य कार्यक्रम साथ के अपना के चौपाल कार्यक्रम आवत
1: रहा। हाँ, गांव के लोगन
2: खातिर, गांव के लोगन के खातिर, तो जो किसान लोग रहे जैसे हमारे बाबा हरे
1: जी
2: सब गौतम के घर है, शुक्ला

0: जी के घर है वहाँ परिवार के इकट्ठा हूँ जी। एक कमरा भर है, कमरा माँ पे एक पैरा के गुड़हरी बना के बैठका बने हाँ। कुछ उन चबेना आवे जैसे लाटा फूटा जो नदी के जाते रहते
1: हाँ।
0: फिर वह चौपाल कार्यक्रम सुना, वही बीच में कुछ अपनो हाल चाल दुख सुख बतामा, वही बीच में कुछ काज ब्याह के चर्चा कर ला के आ तो हमारे नाती के लड़का के काज है एक दूसरे के, तो यह माध्यम से एक लोगन के इकट्ठा हो के प्रवृत्ति बनती रही
1: जी।
0: समाचार के माध्यम से देश दुनिया के जानकारी हो जाए, अब किसानन का खेती किसानी के बात रेडियो के माध्यम से बताई जाती रही है
1: भाई। ओके वैज्ञानिक लोग जब चर्चा करते रहे कि अब यह मेरे के मौसम है, आसम पानी कम बरसी हाँ, की अधिक बरसी, हदिया बीज बोबा, हदिया मेरे के ऊपर आज हुई है ना
0: जी। बिल्कुल यह तरह की जानकारी हो जाए, फिर खेती किसानी कब निदाई करे चाहिए, कब कौन दवा डाले चाहिए, कब कौन वैज्ञानिक से मिले चाहिए, ये सब चीज के जानकारी किसी संकेत मार्च अपना के चौपाल के माध्यम से अब बीच बीच स्पेशल विशेषज्ञ का ले आ लिया है कुछ कविता कहानी के बारे में, फिर खेती किसानी के
1: हाँ
0: जोड़ के गावा
1: बजा
0: जानवर चीज आवत रही, इतने संसाधन आ गए सबका होकर, लेकिन रेडियो का अवधि बड़ा महत्व
1: है।
0: हमार चाचा जी अजुबाव फिलिप्स कंपनी के रेडियो रखे आया बहना सुना था, उनका श्री विनोद प्रसाद शुक्ला नाम है, बोर्ड से कम चलते बता, लेकिन 24 घंटा रेडियो का रखे उम्मीद से सब चीज वो सुना था
1: बिल्कुल। और माना आखी पिराए ना कान पिराए ना कुछ अपन काम करत रहा है
0: जी, ओम कोनो दुष्प्रभाव नहीं होता, सुरक्षित होकर रखा रहता है, सब उसे जानकारी आदमी लेता रहता है।
1: अपना रेडियो के बारे में अपन अनुभव साझा करें, अपना के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे मनई या बतकहाँ सुन रहन के आकाशवाणी के 90 साल पूरे भी और चर्चा करते रहे हैं एडवोकेट विष्णुकांत शुक्ल जी। और देखिए सरकार के 12 साल हो लागा और स्वास्थ्य सेवा के बारे में ये 12 सालन में का उन्नति है का प्रगति है मने ले ओहू के बारे में चर्चा करत है। तो जौन अबा लगभग 12 बरिस के बीच में जौन स्वास्थ्य सेवा है ओमा बहुत बदलाव भा, जैसन के आयुष्मान भारत योजना जौने के तहत 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज, जननी सुरक्षा योजना ओमा महिलन के जैसन प्रसव होता है लड़का बच्चा होता तो के पूरा सुरक्षा के ध्यान रखा जाता है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इनके माध्यम से सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जाती। देखिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या गरीब परिवारन का 5 लाख रुपया तक के कैशलेस, मानो बिना रुपया की वो कार्ड अपना के जेकर बन जाई तो वाले जाब तो इलाज के सुविधा उम मिला थी। भैया बहनी देखिए जैसे गंभीर बीमारी के इलाज के निता निजी और सरकारी दोनों अस्पताल में या आयुष्मान कार्ड मान्य है, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनके तहत जांच मुफ्त, दवाई मुफ्त और हाँ परिवहन सुविधा यानी गाड़ी के सुविधा मुफ्त है, जौन वाहन रही वाहन के सुविधा मुफ्त दिन जाती। भैया बहनी देखी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से देश भर में हजारन ठे केंद्र खुला हाँ जहाँ के सस्ती दवाई मिला थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेजन के स्थापना से देश भर में चिकित्सकन के जौन कमी रही है वो पैरा मेडिकल स्टाफ के वो में बढ़ोतरी भय है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोले की योजना है, कुछ जगह खिलुए गए हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से नागरिकन के डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाए जा रहे हैं जौने माँ इलाज के दौरान डॉक्टरन का मरीज के पुरान मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चलत है और उमा जौन पुरान देख के रिकॉर्ड और डॉक्टर लोग चिकित्सा करत, मानो सरकार द्वारा 12 बरिस में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत है सुधार भा है। अब देखी मनई जान ले काल के

मौसम के बारे में। तो जौन मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के मौसम केंद्र से जौन जौन बही मिली है वह या मानो रीमा जिला और के आसपास के क्षेत्रन में तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना है। और देखिए आसमान में बादल छाए रह सका था, जिससे कत्ती कत्ती देर दिन में तो धूप निकली पर बादल कहाँ आ सका था। और बहुत ज़्यादा वैसा तो जनता लागन के केरल में प्री मानसून आ गया है, ओकर असर जैसे अजुए दिखन के सोका करीब लगभग अपना के मान ले दूसरी बेला में छुटपुट कहाँ कहाँ बारिश भय। तो यह में के बारिश हो सका थी, ऐसे कौनो यह नहीं आए कि बारिश न हुई पर छुटपुट तो हुई। अब आ या प्री मानसून वाली बारिश ही आए तो ऐसे बाकी मौसम शुष्क रही। अब बतकहाँ करे के तहुर मन है पे घड़ी जो ही ना तब इजाजत ही नहीं दे चले के पहले अपना पीछे कागज कलम धरे न हो लिख ले कार्यक्रम के पता चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश, पिन है 486001। त यही पता पर रही अपना पंचन के पाती के परिखाओ। अब दई आज्ञा चौपाल के सवे सुनैयन का हमार मनसुख भाई के राम राम जय जवान जय किसान।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत-बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुए, वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है, उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान

0: अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं, और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी
0: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज, हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में

0: समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज,

वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर,

0: मुंह का कैंसर लेडीज में और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ईएनटी कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक पीएससी वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पन पे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी, और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत

0: अधिक आकर्षित हुआ है, कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में। ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पर बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, और इसके

0: आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट टू डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी

0: 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखे। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक आईडीएसपी का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच आईसीएमआर ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार 7

सात जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, इसमें विषय होगा मानसून के आगमन पर बगीचे और उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 7 जून 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। यह समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी

0: तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो

0: भी हमारे लोग जुड़े हैं जिनसे, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
5: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से

वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तहत मुत्तहिद हुआ कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी

0: टॉप फाइव में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण ये कार्यक्रम RNU भोपाल की प्रस्तुति है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम सोमनाथ अमृत महोत्सव विकास और विरासत की गौरव यात्रा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले दिनों सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और भारत की शाश्वत आत्मा के पवित्र प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। दरअसल सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है। सोमनाथ की प्रत्येक ईंट भक्ति का ताप और भारत के पुनरुत्थान का गौरव कहती है। इतिहास में कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और लेखक श्री कृष्ण मोहन झा जी। जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी में।
3: जी धन्यवाद।
2: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनवाते हैं आपको।
4: साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान KM मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।
2: जहां सर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश को देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है, इसे किस तरह देखते हैं आप?
3: देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ जो सोमनाथ केवल सोमनाथ कहने को नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान सोमनाथ का है।
2: जी,
3: और जो सोमनाथ के साथ घटित हुआ, यदि हम बात करें 1026 में मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद ये लगा कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सोमनाथ का निर्माण हुआ, फिर से आप नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसके बाद फिर आक्रांताओं ने विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसमें हमले किए और उसके बाद पुनर्निर्माण का क्रम समाज करता रहा है। तो यही वजह है कि जो मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारी विरासत है ये सुदृढ़ रही और ये हमें सिखा रही है कैसे हमको जो है मजबूती के साथ खड़े होना है, कमजोर टूटना नहीं है, हम टूटते नहीं है, पुनर्निर्माण करते हैं। ये उनके कहने का आशा है। स्वतंत्रता के बाद भी आप देखिए कि जब 1951 में, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, 11 मई 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी
2: जी।
3: तब से लेकर के 75 वर्ष हो गए और लगातार समृद्ध होता जा रहा है और मंदिर का देखिए कि भव्यता लगातार बढ़ रही है और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, आपको ध्यान होगा कि महाकाल लोक की निर्माण किया उन्होंने, काशी को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने, अयोध्या को देखिए कि अयोध्या का निर्माण और उसकी भव्यता किस ढंग से बढ़ी हुई है। तो आज ये पर्यटन के, यानी आप देखिए तीर्थ तो है ही हैं लेकिन साथ में एक पर्यटन के केंद्र भी बन चुके हैं, यहाँ पे जो है पर्यटन और तीर्थ दोनों का समावेश दिखाई दे रहा है। इससे एक तरफ तो रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, तरह तरह के रोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और जब विदेश से भी लोग यहाँ जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस ढंग से होता है। आपने अपनी आंख से ही देखा, क्योंकि हमारे देखते ही देखते उज्जैन के महाकाल की दशा दिशा किस ढंग से बदल गई, तो उसी ढंग से सोमनाथ को भी हम लेते हैं। क्योंकि जो पहला जो आपका जो प्रश्न है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि हम कहीं टूटने वालों में से नहीं है, हम मजबूती से खड़े होने वाले हैं, जब जब टूटे हैं तो उसके बाद हम ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं।
2: जी जी जी, प्रधानमंत्री ने जो अगला मेरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, सोमनाथ को केवल एक भौतिक ढांचा मानकर उन्होंने उसे टकराते रहे, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आत्मबल, आत्मसम्मान और भारत के गौरव को दिखाता है।
3: देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से हमारी धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद यदि मैंने बाबर नामा पढ़ी तो बाबर नामा में बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को और इतिहास को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करना, उनकी सीख थी। और यही वजह रही है कि जिस ढंग से ये जो हमारी संस्कृति रही है वो बच पाई, तो मुगलों ने उसमें बहुत कुछ, उनका योगदान भी उस ढंग से रहा तो वो किया। और जिस ढंग से समृद्धि हमारे पास, जब से आज़ादी के बाद और किसी देश के प्रधानमंत्री ने जब चिंता की खासतौर पर ज्योतिर्लिंगों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो जिस ढंग से उनकी चिंता देखने को मिल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विरासतों को किस ढंग से मिटाया गया
2: जी।
3: हमारी संस्कृति को कैसे, क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत मजबूत थी, दूसरों के पास संस्कृति नहीं है। एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले भाई महावीर से हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश की का इतिहास नहीं है, जिस देश की संस्कृति नहीं है, वो आज संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को, हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं
2: जी।
3: तो यही उस प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब है कि हमारी संस्कृति तो थी, हमारा इतिहास तो था, लेकिन हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो आयोजन हो रहा है, 75 वर्ष मनाया जा रहा है सोमनाथ जी का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि युवा पीढ़ी जाने कि हम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं, किस ढंग से हम दासता को झेले हैं, गुलामियों को झेले हैं, और आज जाकर के हमको जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को हम किस ढंग से सुरक्षित रखें और पुराने वैभव को हम बना के रखें।
2: और ये सोमनाथ अमृत महोत्सव है जो आने वाले 1000 वर्षों तक जो है वो लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, भारत की प्रेरणा बना रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
3: देखिए निश्चित रूप से लाखों लाखों वर्ष तक, जब तक धरती रहेगी तब तक के सोमनाथ का जिक्र होगा, तब तक के काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा, तब तक के आप ओमकारेश्वर का जिक्र होगा, जब तक महाकाल का जिक्र होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये छाप कभी छूटेंगी नहीं
2: जी,
3: ये हमारे संस्कारों से रची बसी है, हमारी संस्कृति से रची बसी है और हमारे दैनिक जीवन से रची बसी हुई है। तो इसका मिटना तो संभव नहीं है, लेकिन सुदृढ़ता बहुत जरूरी है। जिस ढंग से सुदृढ़ करने का प्रयास है, आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, पूरा प्रयास किया है कि लोग जाकर के देख करके आए। यहाँ से भी आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया,
2: मुख्यमंत्री तीर्थ
3: दर्शन योजना के तहत जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है लोगों को दिखाने की, बताने की। जब तक कि लोग उससे साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या चीज है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मंदिर के इतिहास को अगर हम समकालीन भारत के साथ अगर जोड़ते हुए देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं आप मंदिर का इतिहास समकालीन भारत के साथ?
3: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये जो इतिहास था
2: जी,
3: बड़ा समृद्धशाली था। भारतीय लेखकों को तो छोड़िए, जो फारसी लेखकों ने लिखा है तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये मंदिर सोने की चिड़ैया थी
2: जी।
3: वहाँ पे स्वर्ण को लेकर के उन्होंने कहा अत्यंत समृद्ध माना गया सोमनाथ का मंदिर
2: जी।
3: तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों में कहा, तो समृद्धि तो बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि उसको लुटेरों ने लूटा है
2: जी,
3: कई बार लूटने का प्रयास किया और जितने बार लूटा उतने ही समृद्धि उस मंदिर की लौटती गई है
2: जी जी।
3: तो मेरा यही कहना है कि जिस ढंग से आप, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जो मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है और हम यही बताना चाहते हैं इन 75 वर्षों के बाद युवाओं को कि किस ढंग से जो है उसका इतिहास रहा है, किस ढंग से स्नेह स्नेह निर्माण कार्य हुआ है और आज एक गौरवशाली
2: जी
3: समृद्धता प्राप्त करी है उसने
2: जी। जहाँ साहब 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में ये जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया है, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से ये पहुंचेगा?
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में और ये जो आयोजन है
2: जी,
3: क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं कि जब आयोजन जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वृत्त चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो प्रदर्शन, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी इतिहास से लेकर के आज तक की प्रदर्शनी होगी, तो युवा पीढ़ी समझ पाएगा और उसका प्रचार प्रसार जिस ढंग से आज हम बैठ करके आज ही देख रहे हैं कि आज ये पूरे अखबारों में लगातार सोमनाथ को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि कितना समृद्ध आर्टिकल था, उसने कितनी भावुकता के साथ लिखा और लोगों से अपील भी की कि जाएं सोमनाथ जाएं और वहां पे करें
2: जी। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर अगर
3: सोमनाथ की
2: चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे नौजवान युवा सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, धर्म के बारे में जाने।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो आज का युवा है अब वो किताबों से हट चुका है
2: जी,
3: वो रील में विश्वास करता है, तो अब रील, क्योंकि अब जब वहां जाएंगे तो रील बनाएंगे
2: जी,
3: तो रील भी फ्लोट होगी सोशल मीडिया में, एक जो संचार जिस ढंग से होगा उसका जो जिस ढंग सर्कुलेट करेंगे तो वो गांव गांव तक चीजें पहुंचेगी, तो सोमनाथ की जो कथा है वो अब वो जो युवा हैं वो खुद प्रस्तुत करेंगे, तो उनको खुद एक लगेगा जब वहाँ पे जब आप पहुँचते किसी चीज़ को आप जाकर के स्वयं देखते हैं, जो कि आपने खुद रिपोर्टिंग भी की है, जब किसी चीज़ को रिपोर्ट आप वहाँ पहुँच करके करते हैं तो बात अलग होती है और कहीं सुन करके कोई बात करते हैं तो बात अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों की संख्या में जो वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, कई बुजुर्गों का सपना था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जो है एक मुक्ति प्राप्त होती है और अपने जीवन काल में इसको करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है
2: जी।
3: तो उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे वो पूरे होंगे, युवा जाकर के देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार आप आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से निरंतर, अब देखिए सोमनाथ की स्टोरी लगातार आ रही है, सोमनाथ पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हुआ है
2: जी। जैसा शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो युवा हैं, आज के युवा कुछ साल पहले तक उतने धार्मिक नहीं थे, उतने चेतन नहीं थे धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर, विरासतों को लेकर, लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा

0: धार्मिक जितना होना चाहिए उतना है?
1: ये बहुत मार्मिक प्रश्न आपने कहा।
0: जी
1: 2014 में मैंने भी 2 दिन पहले ही कहीं ये कोट किया था
0: जी
1: कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की।
0: जी
1: उन्होंने कहा शौचालय पहले फिर देवालय।
0: जी
1: जब आजादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़े तो देवालय की चिंता कैसे कर सकते हैं आप। पहले उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की
0: जी,
1: समग्र स्वच्छता की बात की, स्वच्छता अभियान चलाया और उसके बाद देखिए सने सने उन्होंने चीजों को व्यवस्थित किया
0: जी।
1: उन्होंने एक बात और थी, मैं आज यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लड़के को तो आप घूमने देते हैं पर लड़की लेट हो गई तो उसका हिसाब पूछते हैं
0: जी।
1: तो ये जो मैसेज उनका गया, और आज देखिए कि 2014 से हम आज 26 में बैठे हुए हैं, 12 साल का सफर है। इन 12 सालों में महिलाएं कितनी समृद्ध हुई। अभी हाल ही में आपने स्पेशल डिस्कशन भी किया महिला आरक्षण को लेकर के, जो बिल आया था उस पर भी आपने किया। तो पूरे देश ने देखा कि किस ढंग से मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के कार्य किया, और किसी भी परिवार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक पूजा पाठों में उनकी भूमिका रहती है, तो आप जो आपका जो प्रश्न था कि युवा क्योंकि आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पूजा का क्रम और धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि जो संचार माध्यम है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि समाज को ये हतोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण भी इसके माध्यम
0: से। नए साल पे भी युवा जो है
1: पहाड़ों
0: पर समुन्द्र किनारे जाने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं, काशी वाराणसी जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर।
1: भाई आप देखिए पहले लोग ताजमहल और कुतुब मीनार देखने जाते थे
0: जी जी,
1: अब आज जो है वो मंदिरों में, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे इतने सारे परिचित आते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत जाती है कि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए आज इतनी भीड़, लाखों की संख्या में नए वर्ष में जो है वो युवा आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, और हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता की तरफ से हम माननीय मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे, उनको जीवित कर दिया, आज उनको इस योग्य बना दिया कि लोग आज वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज देखिए आज आपके परिचित कितने बोलते होंगे कि उज्जैन जाना है
0: जी,
1: तो आज आप हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था करना कठिन हो गया है।
0: जी सही बात। अमृत महोत्सव की बात चल रही है, तो जो सोमनाथ अमृत महोत्सव है इससे सोमनाथ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को जहाँ साहब कैसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?
1: देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन जब होता है
0: जी,
1: तो जब बाहर से जब आदमी आता है, जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं
0: जी।
1: तो एक तो आने के लिए आपको पहले तो होटलों की व्यवस्था की जरूरत होगी वहाँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं
0: जी।
1: तो होटलों में होटलों का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा
0: जी।
1: फिर आपको वाहन का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है। फिर धार्मिक पर्यटन के लिए जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
0: जी।
1: जो स्थानीय जो परिवहन है उसको लाभ मिलता है, गाइड को लाभ मिलता है, जो वहाँ का लोकल उत्पाद होता है उसको एक दिशा दशा मिलती है। आप देखिए कई प्रोडक्ट ऐसे हुए जो लोकल से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए। तो जो हस्तशिल्प है हमारा उसको एक अलग स्थान मिलेगा। प्रसाद का उद्योग है वो बढ़ोतरी हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं जो फूल नारियल
0: जी,
1: और ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक उसको भी एक अलग दिशा मिलेगी
0: जी, जी जी जी।
1: अच्छा गुजरात सरकार द्वारा इसको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया
0: जी,
1: गया है
0: जी। और जाहिर बात है कि अगर जो धार्मिक पर्यटन से अगर हम इसको देखें जोड़कर, तो जब लोग आएंगे तो स्थानीय जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी फायदा होगा, जो होटल वालों का भी फायदा होगा। चौतरफा विकास पर्यटन के साथ, ये मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही कही जाए कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वहाँ विकास चौतरफा हुआ है। सिर्फ मंदिर नहीं बनाए हैं, मंदिर के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है,
1: चहुमुखी विकास हो रहा है। और देखिए आप दूर मत जाइए, आप तो यहाँ से हमने उज्जैन आपने खुद देखा हुआ
0: जी।
1: कल और आज में आप अंतर महसूस करिए कि कल क्या था
0: जी।
1: आज आप चाह करके भी वहाँ पे होटलें पूरी फुल हैं
0: जी।
1: वहाँ पे रोजगार के नए नए सृजन होते जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो यही स्थिति आपको सोमनाथ में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि लोकल उत्पाद अब जो है ग्लोबल होता जा रहा है। तो हमारी जो चीज़ें थी, तो अब बाहर का जब आदमी आकर के जब देख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता होती है। और वहाँ पर ये इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको देखने को मिले।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहाँ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है सोमनाथ मंदिर जो अमृत महोत्सव है उस पर।
1: देखिए, किसी चीज़ को जीवंत रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सब चीज़ें बरसों से चले आ रही है। और ये एक, क्योंकि आप देखिए कि स्मारिका निकाली जाती है,
0: जी
1: डाक टिकट जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बताता है। ये बरसों बरसों तक, जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी ने कहा कि हज़ारों वर्ष तक याद रहेगा, तो याद कैसे रखा जाएगा?
0: जी
1: तो ये डाक टिकट याद रखे जाएंगे, ये
0: जी
1: सिक्के याद रखे जाएंगे,
0: जी
1: ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो याद रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इस चीज़ को चिरस्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
0: जी जासर, सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक यात्रा जो है 1026 सन 1026 से शुरू होती है और आज हम सन 2026 में हैं, 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी हुए और इन आक्रमणों और उनके पुनर्निर्माण के बाद जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, किस तरह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रतीक बन सकता है?
1: देखिए, बहुत ही ये बात रही है कि मोदी जी ने इस बात को, जैसे आपने भी कहा
0: जी
1: कि किसी चीज़ के विकास के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को,
0: जी
1: सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए,
0: जी
1: क्योंकि आप जब सोमनाथ जाएंगे तो
0: जी
1: गुजरात के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे,
0: जी
1: सोमनाथ के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे। तो ये जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होंगी,
0: जी
1: जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे मानस में स्थान बना चुके रहेंगे,
0: जी
1: मानस पटल पे वो शामिल हो चुके रहेंगे। तो ये
0: जी
1: जो करोड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग जा रहे हैं वहाँ पे,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे पड़ेगा। और
0: जी
1: आने वाले समय में, जैसे आप हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में,
0: जी
1: तो धीरे धीरे शनि शनि एक एक ज्योतिर्लिंग पे काम होना शुरू हो चुका है।
0: जी
1: तो आने वाले समय में इसी तरह के जो आयोजन हैं वो अन्य जगहों पर भी होंगे, तो हमें लगता है कि हमारी जो विरासतें हैं वो और सुदृढ़ हो पाएंगी।
0: जी 11 मई को जो समारोह के दौरान, जो अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भव्य कुंभाभिषेक और महापूजा की और देश की समृद्धि की, लोगों के कल्याण की कामना की।
1: देखिए, ये हमारी परंपरा है,
0: जी
1: क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जब
0: जी
1: भी कभी जब सिंहस्थ होगा तो
0: जी
1: 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से वहाँ अभिषेक होगा, विधिवत सारे अखाड़ों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे,
0: जी
1: शंकराचार्य वहाँ मौजूद रहेंगे।
0: जी
1: और उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। यही कार्य मोदी जी ने यहाँ किया,
0: जी
1: और यही वजह है कि जिस ढंग से आपने देखा कि 11 मई को चूंकि इसकी नींव रखी गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, चूंकि
0: जी
1: 11 मई 1951 में
0: जी
1: जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस ऐतिहासिक पल को वो किया था, उसको याद किया गया। और यही वजह थी कि मोदी जी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक करके ये इस कार्य की का श्रीगणेश किया था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अंतिम एक, जो आज के युवा हैं, और क्योंकि युवा पीढ़ी के केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में हमेशा युवा पीढ़ी रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म को लेकर, विरासत को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, जो सोमनाथ, आप भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये अपील करेंगे कि वो भी सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ की विरासत को देकर देखें, और किस तरह से इतने आक्रमणों के बाद भी मंदिर आज वहाँ खड़ा हुआ है और देश के गौरव की को बता रहा है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं आज के युवाओं से यही आग्रह करना करूँगा कि वो हमारी विरासत को, वो हमारे इतिहास को और वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि भारत की बागडोर आने वाले समय में आपके हाथ में आने वाली है।
0: जी।
1: आप इसको समझें कि इसकी महत्ता क्या है। बड़े संघर्षों से चीज़ें आज यहाँ खड़ी हुई है, इसको सहेजना और आगे लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। आप जरूर देखें और आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि किस ढंग से कोई इमारत बार बार टूटने के बाद भी खड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस बात को आत्मसात करने का ये अवसर होगा कि किस ढंग से गजनवी ने इसको बार बार तोड़ा, उसके बाद कई आक्रांताओं ने इसको तोड़ा, लेकिन आज भी सोमनाथ खड़ा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर आज भी वही वैभव के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि यदि हम प्रयास करते रहें तो जीर्ण उद्धार लगातार होता है और हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी जाने से पहले एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में 11 मई को जो शामिल

0: हुए थे, वहां पर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
1: हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारक कृष्ण मोहन झा जी को, जो कि सोमनाथ अमृत महोत्सव पर उन्होंने विस्तार से वहां की विकास और विरासत की गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: धन्यवाद, और आकाशवाणी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साधुवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को समाहित किया और लोगों तक सोमनाथ के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।

0: लोग सुन रहे थे पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति थी।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। We will now listen a composition titled कुहके बारी कोयलिया हो रामा।

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashvani Delhi. Continuing the broadcast from

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

कभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोण रे सरुना ही बिका किणा। जीवन हेउ केते पाट बणा, हेउ केते पाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकरों में छ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agri-wood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg.

0: Fiji, and that's the end of the news.
1: मीडियम 5 डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह इसी मीटर बैंड पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त जावेद खान को। जय हिंद।